0: It was Tanisha's father who introduced her to cricket.
1: मैं 9-10 साल की थी और मैंने पापा की वजह से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. हम घर में कज़न्स, ये सब बहुत सारे कज़न्स थे, तो हम गली में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो तब से शौक आ गया था क्रिकेट खेलने का.
0: But she soon realized

0: से मैं वो टूर्नामेंट खेली थी एंड मैंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी, उस वजह से मुझे एक अवार्ड मिला था। मुझे ऐसा फील होता था कि लड़कियों की टीम ही नहीं है, मैचेस भी देखे हैं तो लड़कों के ही मैचेस देखे हैं, वो विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के। बट जितना मैं खेलती रही मुझे पता चला कि हाँ लड़कियाँ भी खेलती है, तो तब पता चला कि हाँ यार लड़कियाँ भी स्विंग करती है बॉल, स्पिन करती है बॉल।
1: मेरी सुबह बात हुई थी ना, जैसे शॉट खेल दिया, अभी भी मैंने देखा है तो उसको एयर ज्यादा
2: It was only when she started playing for Delhi's under 16 team that Tanisha found herself batting and bowling alongside other girls. But things were much bleaker for her coach Latika Kumari. When Latika played for the national team, she was only paid a token amount and the matches were few and far between.
3: ऐसे चलेगा, इसको ऐसे नहीं चलाना,
0: हम सीधा कर रहे
3: हैं, इधर नहीं चलाना, हां तुम लोग इधर खेलो।
4: क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत रेयर होते थे, सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता था, बीच में एक दो सीरीज हो गई तो हो गई। वी यूज टू स्टे इन वन हॉल लाइक 5-6 टीम्स एंड यूजिंग 2 or 3 वॉशरूम्स, एंड खाने का भी इतना हाइजीनिक नहीं रहता था। हम लोग अपनी बेडिंग खुद लेके जाते थे, किडबैग को पिलो की तरह यूज करके फर्स्ट पे सो रहे हैं। नाउ दीज डेज मोर प्रोफेशनल लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं, कोचिज बोल लो आप, एसेंसीज हैं, फिजियोज हैं, तो स्टेडियम्स में आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और टीवीज पे हम, टीवी वगैरह पे हम लोग आ रहे हैं, जो कि सपना ही था हमारे लिए कि हम कभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे।
5: Do you ever wish that you are a young cricketer right now?
4: Of course, why not? Because वो dream तब भी था, हम लोग ने represent किया country को, but आज के time में अगर हम लोग होते तो मे भी हम भी कह सकते हैं कि लोगों को दिख रहे होते अभी।
2: Sneha Rana is a player who has seen both worlds. She made her debut for the Indian team in 2014. And has toiled in anonymity for most of her career. But winning the 2025 World Cup has transformed her into a household name.
6: Hello.
5: Hello. So nice to meet you.
6: Thank
5: and congratulations
6: you.
5: On the World Cup win.
6: Thank you so much.
5: So excited to be here with you.
6: Thank you so much. Welcome, welcome.
5: This is your house? This is where
6: yes,
5: you grew up?
6: Yes, yes.
5: Okay.
6: This is our village, Sinola.
5: Okay.
6: Here I grew up. I have a joint family, as you can see.
5: Okay. And everybody's playing cricket.
6: Yes. They are very fond of cricket. See there, little master.
5: Little master. Perfect. With a very small bat.
6: Yeah.
2: We meet Snehe on a rare break at her home in Dehradun, a city in the foothills of the Himalayas.
5: Of course, winning the World Cup is the pinnacle of anybody's cricketing career. But personally, what does it mean for you to lift that cup?
6: It was a very huge and special moment because all this time we have prepared for that thing and we have dreamt of lifting the World Cup trophy since many years. Lifting that trophy, it means the world to us. Yes. See, it will definitely bring a huge change in women's cricket. Moreover, the perspective of people and those parents who think that there's no career in cricket, I think the mindset will change. I think many parents will give freedom to their girl child to take up the sport.
2: Though she received nothing but encouragement from her family to follow her dreams, the story of Sneha's beginnings in cricket has a familiar ring.
6: तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और 6 फैमिलीज टुगेदर, और हम लोग बहुत सारे कजिन्स थे और यही ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे। वी हैड अ ग्राउंड नियर बाय अर्लियर, और तो हम वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलते थे आपस में, एंड आई वाज द ओनली गर्ल बाय द वे। अकेडमी थी लिटिल मास्टर, तो वो खेलने के लिए आए थे यहाँ पे मैच, और उनका मैच हमारे गांव के जो 11 होती है उनके साथ था। एंड आफ्टर दैट मैच उन्होंने, जो हमारे टीम थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। एंड बाय द वे आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट दैट टाइम, तो मैं वहाँ पे पास में एक पेड़ था और मैं उसके पीछे जाके छुप गई। सो आई वाज लाइक कि नो नो नो आई डोंट वांट टू प्ले, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। सो दे वर लाइक कि नो कम, एंड एक बॉल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आई अपने अंदर, एंड देन आई वेंट एंड आई बोल्ड 1 ओवर, एंड विकेट भी ली थी मैंने उसमें, और एंड आई प्लेड 1 ओवर।

0: सी बीइंग अ वुमेन क्रिकेटर आई थिंक एवरी फेस पे चैलेंज है. पहले तो घर से बाहर निकलने का वो बैरियर था. सेकंड था आप क्रिकेट खेल रहे हो बिकॉज उस टाइम पे सब बोलते थे ये बॉयज़ का गेम है, यू कांट प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं. सो माई पेरेंट्स हैव हर्ड ऑल दोज क्रैप्स.
1: Even as Sneha's talent took her higher and higher and into the national team, her struggles continued.
0: See, पहले पैसा बहुत कम था women's cricket में. अगर मैं बात करूँ domestic की तो it was like around 1200 rupees per match. It was very difficult to make career.
1: Things started to change when the Indian women's team, against all expectations, reached the final of the 2017 World Cup, forcing people to notice them. The next big change came with the Women's Premier League in 2023, followed by the World Cup win 2 years later. In 2022, the sports governing body announced equal pay for international matches. This was expanded to domestic games after the 2025 World Cup win. But with fewer matches scheduled for women, men can still earn up to 10 times more.
0: पहले फ्री टिकट्स होते थे विमेंस मैचेस के लिए बट नोबडी रियली शोड अप. नाउ स्टेडियम्स आर फुल, वी सी दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर द टिकट्स.
1: एट द एकेडमी वेयर स्नेह स्टार्टेड हर जर्नी, अ यंग गर्ल इज लर्निंग द बेसिक्स ऑफ द गेम. वेदिका, हु इज 6, is following in the footsteps of her brother Sharya.
2: Again cover drive karengi. Udhar jao. Cover drive. Nice shot. Shabash, shabash. Thoda thoda
3: bowler ko dekhe samne aur apna footwork istemal karke seedha straight drive karenge aap, theek hai na? Okay, straight drive. Beautiful, shabash. Abhi cover drive karenge.
4: Pair theek kar rahe to girana mat bachcho ko.
1: When training ends, their father comes to pick them up and invites us back to the family's home.
5: कुछ खाना है? लो ले लो, बिस्किट वगैरह लो.
6: मेरा फेवरेट प्लेयर स्नेहा राणा है.
7: क्या सिखाती
6: है? मतलब जैसे जब ये बैटिंग करती है, जब मैं बोलता हूँ सीधे करिए, बैट इसका पीछे जाता है, कहती है मैं सही डाल दी, अगर सर मेरे को टोकेंगे तो मैं तो तब सही करूंगी.
1: The sibling's father, Vimal Rajput, wanted his son to learn cricket and enrolled him at the academy.
8: Vedika ka aisa hua, isko chhodne gaya saath mein, main bolu isko yahi chhod de. Main nahi ma'am, nahi chhod paunga main. To maine ma'am aapko pareshan kar degi ki nahi main bol rahi hu, main isko sambhal lungi, handle kar lungi. Bas darte darte choda. Aaj hai ki turant jaate hain ye cricket ke naam se. स्कूल से आएंगे, अपना फटाफट काम करना, सब करना और क्रिकेट जाना है.
9: तो जिस टाइम पे हमारा कॉलेज है, स्कूल का टाइम था, उस टाइम तो अपॉर्चुनिटीज में इतना नाम सुना ही नहीं था कि वुमेन्स का क्रिकेट होता है. एक्चुअली मैंने मैचेस देखे हैं, जैसे हमारी स्मृति मंदाना जी हो गई, स्नेहा राणा है, तो इनको देखती हूँ. तो अभी लास्ट जैसे मैच हुआ था जो ये जीती है इंडिया, तो इसमें इन्होंने हरमन प्रीत जो इनकी कैप्टन है, उन्होंने जो लास्ट कैच किया था तो वो तो आउटस्टैंडिंग, मतलब वो तो तारीफ उनकी जितनी की जाए उतनी कम है. तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें देख के एक प्राउड फील होता है कि हमारे घर में भी बेटी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी उस तरीके से अपना नाम रोशन करे.
1: India is home to thousands of cricket academies where the next generation of stars train. But until about a decade ago, most didn't allow girls. To join this academy in the northern state of Haryana, Shafali Verma, one of India's star World Cup players, had to cut her hair short and pretend to be a boy. Now, more than 200 girls come here to train.
10: 10 साल की है मेरी बेटी, तो मेरी बेटी को 1 साल हो गया यहाँ पे आते हुए. लगभग लड़के ही हैं, लड़कियों को कोई ही फैमिली ऐसा जो स्पोर्ट्स करती है. मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरे पूरे गांव में मेरी एक बेटी है जो क्रिकेट कर रही है.
11: देखो मैं भी यहाँ पर आई ना, तब मुझे भी नहीं था कि गर्ल्स इतनी, विमेंस टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल है. बट यहाँ पर जब हमने देखा ना कि शेफाली वर्मा ने जिया, तो उसके बाद से इस एकेडमी से, इवन उसके नाम से, मतलब यहाँ पर गर्ल्स ने इतना ज़्यादा एडमिशन लिया. क्योंकि जब एक वो कर सकते हैं तो वाई वी कांट, कि हम क्यों नहीं कर सकते.